चतुरश्र जाति त क धीमी त क धीमी त क धीमी त क धीमी खंड जाति त क त की ट त क त की ट त क त की ट त क त की ट मिश्र जाति त की ट त क धीमी त की ट त क